0: आज तू क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: है लाइका गोल्ड।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Laika Gold par.

0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
4: Four beers, please, garçon!
3: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: But how? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
8: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नान हुक्मे

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष घरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

वह मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवार।

0: What a classic to start off with on this Tuesday morning from the film Ram Balram. और उससे पहले फिल्म पहचान से आपने सुना सनम ओ सनम. 6:15 is the time. Wakey wakey, rise and shine.
1: Gold breakfast with Kajol.
0: जी आप सुन रहे हैं काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो एंड दैट्स ऑफ कोर्स लाइक अ गॉड यूकेस नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन एंड ऑफ कोर्स लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स और दोनों आप सुन सकते हैं डैब रेडियो पे ऑनलाइन एंड लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप और भूलिए मत कि लाइक अ रेडियो हमारी जो सिस्टर रेडियो स्टेशन है लाइक अ रेडियो लंदन और लाइक अ रेडियो मैनचेस्टर आप सुन सकते हैं डॉनी ब्रास्को जो है आपके साथ 10 बजे तक एज वेल एट लाइक अ रेडियो नेटवर्क एंड हमारे तीन एडिशनल रेडियो स्टेशन जो हैं वो है लाइक अ रेडियो 90s लाइक अ रेडियो पंजाबी एंड लाइक अ गोल्ड 2 अवेलेबल ऑन द ऐप ऑनलाइन एंड अलेक्सा एज वेल. So you've got a variety of radio stations to listen into. 7 radio stations and 1 podcast. Podcast na bhuliye. हमारे जो पॉडकास्ट है इसमें काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आउटस्पोकन है, ब्लंड है, फनी है, काफी कुछ. So you gotta watch, you must watch our podcast as well. Available on Amazon, available on Google, available on Spotify as well. Do watch out for our Laika Radio podcast as well. Right, so we start off with 2 beautiful tracks, Pehchan and Ram Balram. We've got another beautiful one coming up very soon from the hit film Chadas.
1: This is Laika Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: A pound can buy you 127 Indian rupees. Make sure you transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: ये है
2: लाइका गोल्ड.
0: एक बहुत ही सैड न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हमारी जो कैपेचिनो मशीन है वो बंद हो चुका है और अभी नहीं चल रहा है, डैमेज हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया है. तो आज कोई कैपेचिनो नहीं होंगे, कल भी नहीं होंगे और होंगे और उसके बाद भी नहीं, क्योंकि हम वो मशीन रिप्लेस नहीं करने जा रहे. सो इज काजल फीलिंग सैड? यस, आई एम फीलिंग टायर्ड. यस, क्योंकि मुझे कैपेचिनो नहीं मिल रहा है. लेकिन ये कॉफी जो मैंने अभी बनाई, लेट्स ट्राई इट. आई मीन इट्स एन इंडियन कॉफी स्टाइल आई मेड, सो लेट्स सी it is nice, it's okay I suppose. Lekin yaar, you know, super super you always need that one drink which you're so used to. Yeah, you know what I'm talking about, right? Which one is yours? Tell me, which is that one drink that starts off your morning?
1: WhatsApp message Laika Gold now on 0744 23 23 23. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: Good night.
5: Achha, good night.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Two businesses,
4: same town,
3: same service.
4: One appears on page one of Google,
3: the other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
6: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
8: लॉटो फ्रॉम द नेशनल लॉटरी नाउ गिव्स यू 2 चांसेस टू विन विद एवरी टिकट, सो इट कुड बी यू एंड इट कुड बी यू, यू एंड देन द सेम यू. Again, you. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
10: Gold Breakfast with Kajal.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बताओ।
1: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
0: अच्छा जी।
1: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
0: तो अगले इतवार

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Travel ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana, Disha Basmati Rice.
8: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
11: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
12: Yes!
11: Be a step ahead with Barclays Premier with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
13: Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Imagine Jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek Sham Soulful Music, Devotion or Energy Ke Naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
2: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड, भाई पुराने गीतों का खजाना। और मैं हूं रवि शर्मा, आपका पुराना दोस्त। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं। गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और सब बहुत कुछ मसाला लेकर के स्टूडियो में हाजिर हूं। थैंक्स कहता हूं पहले काजल को, शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और बहन भाइयों, शायरी से करेंगे शुरुआत और उसके बाद परोसेंगे न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीतों की सौगात। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ कुछ पल के लिए, गम को भुलाकर तो देखिए। हाँ, कुछ पल के लिए गम को भुलाकर तो देखिए, खुशियों से दोस्ती को बढ़ाकर तो देखिए। मशहूर कर रहे हैं क्यों चेहरे पे सजा के, अरे नामो निशान दुख का मिटा कर तो देखिए। ख्वाहिश देखने की अगर रब का कोई रूप, तो रोते हुए चेहरों को हंसा कर तो देखिए। और आने ही नहीं देगा परेशानियां करीब, सुन लीजिए, आने ही नहीं देगा परेशानियां करीब। रवि शर्मा का प्रोग्राम लगा कर तो देखिए।
1: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: खत्म हो गया गाना, ऐसे भी खत्म करते हैं क्या गीत को? एकदम जैसे भाई वो इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं ऐसे ब्रेक लगा। लेकिन दो गीत हमने आपको सुनवा दिए हैं और मुझे यकीन है कि भाई गीत पसंद आए होंगे आपको और शायरी भी। भाई ये अंदाज है मनोरंजन की शुरुआत का, लाइका रेडियो नेटवर्क के इस लाइका गोल्ड पर। तो भाइयों दोपहर बाद 1 बजे तक जुड़े रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी, फुटबॉल का जिक्र भी होगा, चिंतन भी होगा और भाई गीत होंगे रंग बिरंगे, यानी कई रंगों के। हालांकि गीतों पर सीमा है कि लिमिट है एक तय की गई है कि भाई इतने ज़्यादा नए गीत आप नहीं बजा सकते, आपको पुरानी दुनिया में लौटना पड़ेगा, पुराने गीत पुराने कलाकारों की आवाज़ें शामिल रहेंगी और भी कई तरह की लिमिट्स के बीच रहते हुए, सीमा के भीतर रहते हुए भाई हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा रोचक रूप देने की कोशिश करेंगे। राइट, आइए अब सबसे पहले तो जान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK पाउंड का क्या रेट दे रहे हैं भारत में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: पैसे भिजवाना चाहते हैं भाई भारत में अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, तो यहाँ 1 पाउंड के बदले SBI UK आज जो रेट दे रहे हैं वो है 127 रुपये, 127 रुपीज मैक्सिमम दे आर गिविंग। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, या आप ब्रांच में जाकर के भिजवा सकते हैं, ऑनलाइन भी भिजवा सकते हैं या फिर SBI YONO मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आप पैसे भेज सकते हैं। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: रेगलो द्वारा प्रायोजित, भाई लीजिए हम आपको रिपोर्ट देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और क्वार्टर फाइनल की टीमें फाइनल होने जा रही हैं। क्वार्टर फाइनल की टीमें फाइनली, कौन कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में भाई पहुंची हैं? 6 टीमें पहुंच चुकी हैं, 2 और पहुंचेंगी। और आपको बता दूं कि 2 मैच आज जो खेले जाएंगे उनसे पहले ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और बेल्जियम के बीच जो मैच हुआ उसमें बेल्जियम की जीत हुई और बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल के लिए एंट्री कर ली है। उधर भाई इंग्लैंड भी पहुंच चुका है, इंग्लैंड और नॉर्वे का मैच होगा, उनमें से पता लगेगा कि कौन जा पाता है सेमीफाइनल में। और फिर यानी क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें, सेमीफाइनल में 4 टीमें, फाइनल में 2 टीमें और फिर चैंपियन होगी 1 टीम, बस इतना सफर बाकी है। तो आज के मैचेस बता दूं मैं आपको, शाम 5 बजे इजिप्ट और अर्जेंटीना के बीच बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है और भाई फिर रात को 9 बजे भिड़ंत होगी स्विट्जरलैंड और कोलंबिया की। जोड़े रखेंगे हम आपको फुटबॉल से, ग्राउंड से, नतीजों से, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। और भाई धन्यवाद दें उनको जो ये नतीजे और ये बातें आप तक पहुँचाते हैं फुटबॉल के बारे में। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica। बस इतनी सी शर्त है फुटबॉल के बारे में स्पॉन्सर करके ये जानकारी पहुंचाने वाले Rack Law से 15 मिनट फ्री कानूनी मशवरा आप ले सकते हैं Leica मेंशन करके।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Yeah, like a

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आज के प्रमुख समाचारों में भाई ज्यादातर तो खेल की खबरें शामिल हैं, फुटबॉल की खबरें हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें बड़े उलटफेर हो रहे हैं। स्पेन ने पुर्तगाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, रोनाल्डो का सपना टूट गया है। कहते हैं कि स्पेन से हारने के बाद रोते हुए मैदान से बाहर निकले रोनाल्डो। पहलगाम हमला, पूरक आरोप पत्र में हाफिज सईद के खिलाफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा जोड़ी गई है। जिम्बाब्वे T20 सीरीज के लिए संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए हैं, रिंकू सिंह की वापसी हुई है। और इनके अलावा अन्य खबरें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद ने रिएक्ट किया है। उन्होंने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इस्तीफों का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी सिर्फ चोरी नहीं बल्कि डकैती है। इस घटना से निश्चित रूप से भगवान राम के मंदिर की पवित्रता पर आंच आई है और अयोध्या के लोगों की छवि भी धूमिल हुई है। अयोध्या के उस इलाके के MP का ये बयान है। इंटरनेशनल खबरों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जब तक ईरान के खिलाफ धमकियां जारी रहेंगी तब तक अमेरिका के साथ आखिरी समझौते के लिए बातचीत शुरू नहीं होगी। अराग़ची का यह बयान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुँचा के ही दम लेंगे। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT से हटाने पर पंजाब के एक मंत्री का बयान आया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले में समाचार एजेंसी ANI से कहा कि 1992 से 1997 के बीच पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य के नौजवानों पर बहुत अत्याचार हुए थे। उन घटनाओं को दिखाने वाली फिल्म पर पाबंदी लगाना बिल्कुल गलत है। ऐसा लगता है कि अकाली दल, BJP और कांग्रेस आपस में मिल चुके हैं क्योंकि ये फिल्म इन तीनों पार्टियों के कच्चे चिट्ठे को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया कि कैसे पंजाब के नौजवानों पर हमला होता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इंडोनेशिया का सबसे बड़ा अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सिविल ऑनर से, जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा, से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में लिखा गया है कि आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी जी की ओर से लिखा गया है, ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के हिस्टोरिकल और आत्मीय रिश्तों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी। मुंबई से आने वाली खबरों में भाई, वहाँ भारी बारिश का कहर जो है टूट पड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद, पुणे में भूस्खलन से धरती के खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार आज मंगलवार को भी जारी है। सुबह लोगों की नींद घने बादलों और तेज हवाओं के बीच खुली। एहतियात के तौर पर मुंबई के सभी सरकारी और प्राइवेट और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी घोषित की गई है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अपना बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले के बाद हुए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को लेकर फिर से टिप्पणी की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस को लेकर के किए गए सवाल पर ट्रंप ने दावा किया कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष भी रुकवाया और दूसरे मामलों में भी ऐसा किया। भारत और पाकिस्तान का मामला बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि न्यूक्लियर जंग का खतरा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक उसमें 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी, शायद 5 करोड़ भी मारे जा सकते थे, इसलिए मैंने वो जंग रुकवाई। दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 4,800 कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान किया है। ये उसके कुल कर्मचारियों का करीब 2.1% है। इस छटनी की सबसे बड़ी मार कंपनी के एक्सबॉक्स डिवीजन पर पड़ेगी। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को हराकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बेल्जियम ने अमेरिका के खिलाफ 4 गोल दागे, जबकि अमेरिका सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। और रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर खत्म हो गया है। स्पेन से हारने के बाद कहते हैं कि रोते हुए मैदान से बाहर निकले रोनाल्डो। फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शानदार कैरियर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते बिना ही समाप्त हो गया है। उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच जो है पुर्तगाल के लिए खेला गया था और वो 1-0 की हार के साथ ख़त्म हुआ है। स्पेन की टीम ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा कर रोनाल्डो का सपना तोड़ दिया है। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने पुर्तगाल को बाहर का रास्ता दिखाया, तो भाई अब 6 टीमें तो क्लियर हो चुकी हैं कि क्वार्टर फाइनल में कौन कौन सी शामिल होने जा रही हैं। 2 टीमों का फैसला आज हो जाएगा। 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में एंटर करेंगी, उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफ़र जारी रहेगा। हम जोड़े रखेंगे आपको फुटबॉल के साथ। आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
2: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: धार्मिक महत्व का गीत है भाई। एक खबर जो हम खबरों में शामिल नहीं कर पाए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने अब्बा के अपने पिता के जनाजे में नजर नहीं आए। संडे को हजारों लोग दिवंगत आयतुल्ला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान ईरानी शासन के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। अली खामनेई के बाकी तीन बेटे मसूद, मुस्तफा और मैसम, ये तीनों रस्म में शामिल हुए। उनके साथ राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ अहमद वाहिदी समेत कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन मुज्तबा दिखाई नहीं पड़े। और इसको लेकर की अटकलें और बढ़ रही हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि उन्हें अमेरिकी इजराइल हवाई हमले में चोट लगी थी, जिसमें उनके पिता की मौत हुई थी, उसमें वो भी जख्मी हुए थे। सच क्या है सामने आएगा।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: This is Like a Gold.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथ हॉल ट्रेवल का पैगाम है आपके नाम भाई। साउथ हॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डेस्क ऑन 02 08 574 8410। भाई दुबई डील्स के लिए आप इनसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि ये मशहूर तो है, एटॉल प्रोटेक्टेड भी है और तमाम सुविधाओं के लिए बड़े मशहूर हैं।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Like a gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमिंग फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी हर टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमिंग फूड पोटैटो चिप्स नाउ।
10: Sona Tours, Doko.uk, Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
12: If only there was a way that could work with
11: your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और लीजिए रेट्स नोट कीजिए भाई, LemFi वाले इस समय एक पाउंड के बदले दे रहे हैं इन इंडियन करेंसी 127.15 रुपीस, पाकिस्तानी 372.07, श्रीलंकन 447.76, बांग्लादेशी टके 164.77, अफगानी 85.18 एंड केनियन शिलिंग्स 173.04.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is trading at the rate of 99.26 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
6: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
7: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
7: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574।

0: पूछो।
1: कितनी बातें पूछोगे एक बात का सहारा लेकर के। भाई लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाजों में ये गीत हमें ले आया है 11 बजे की खबरों के नजदीक। और भाई खबरों में भाई फुटबॉल तो मुख्य रूप से छाया हुआ ही है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। लेकिन एक बात और सामने आई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब युद्धों को रुकवाने का दावा करने के बाद फुटबॉल में भी अपनी एक्सपर्ट

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं और ये वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। भाई आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हमारे एक पुराने मित्र प्रोफेसर भीम देव का आलेख शामिल करते हैं। प्रोफेसर भीम आजकल सिडनी में निवास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। इस समय वहां रात है। कहते हैं मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की इस घटना को, इस भाई वाकई को ध्यान में रखते हुए ये चिंतन में बात शामिल करेंगे। साथ में उन्होंने एक और रिक्वेस्ट भेजी है। कहते हैं कि एक मेरे बहुत पुराने मित्र ब्रिटेन में पवित्र सिंह भामरा होते थे। भाई आपके श्रोताओं में अगर कोई उन्हें जानता है और उन्हें पता है कि वो कहाँ हैं तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। पीटर नाम से मशहूर थे पवित्र सिंह भामरा, उन दिनों टैक्सी चलाते थे। कहते जब मैं ब्रिटेन आया था, बहुत पहले, करीब 45 बरस पहले की बात है, तो कहते मेरा पहला परिचय पीटर से ही हुआ। पवित्र सिंह भामरा पीटर नाम से मशहूर थे। कहते उनकी कोई खोज खबर मिले तो भाई मुझ तक पहुंचाना। भाई लोग मुझ तक पहुंचाएंगे, रेडियो पर भिजवाएंगे, तो मैं प्रोफेसर भीम, आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास है, मैं जरूर भिजवाऊंगा। आपने चिंतन भेजा है जिस पते पर उसी पर। साथ ही प्रोफेसर भीम कहते हैं कि उनके बेटे, वो अगर सुन रहे हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहन भाइयों, पहले हम उनका चिंतन शामिल करते हैं, फिर आपको याद दिलाएंगे कि पीटर भामरा के बारे में क्यों जानना चाहते हैं प्रोफेसर भीम। आज के चिंतन में आज के इतिहास को वो याद दिला रहे हैं। कहते एक धर्म स्थान पर मैं रहता था, वहां पर एक महिला को बहुत उदास बैठे देखा। मैंने पूछा, माताजी आज बहुत सैड दिखाई पड़ रही हैं। मां की आंखें छलक गई। बुजुर्ग महिला, बहुत बुजुर्ग नहीं, अधेड़ उम्र की, और वो रेगुलरली इस धर्म स्थान पर आती थी, पूजा पाठ में बड़ी आस्था रखती थी। उन्हें उदास देखकर कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा तो कहने लगी, क्या बताऊं, मेरी बेटी को जेल हो गई 15 महीने की, छोटी उम्र का है, सलाखों के पीछे रहेगा 15 महीने। अरे माताजी, क्या किया बेटे ने ऐसा, कैसे बताऊं। मां बोली, आपके इस धर्म स्थान को उसने आग लगाने की कोशिश की थी। कहते मैं चौंका, माताजी उसकी रिपोर्ट तो मैंने ही लिखाई, कोर्ट में गवाह के रूप में मैं ही गया था, मतलब आपके बेटे को जेल मैंने ही करवाई। छलकती आंखें और सुबकते अल्फाज, कहने लगी, बेटा इसमें आपका क्या कसूर है, आग भड़क जाती तो आप तो यहीं रहते हैं, आप जलते वो भी मेरा ही नुकसान था बेटा, जख्मी होते मुझे बहुत तकलीफ होती, आप भी मेरे बच्चे की तरह हैं। तो मां, बेटे ने ऐसा क्यों किया, फैसले लेने के लिए इतनी मैच्योर उम्र भी नहीं है उसकी, फिर किस नफरत से, किस कारण से, किस गुस्से से उसने ऐसा किया। संभल कर मां बोली, छोटे छोटे बच्चों को आतंक के कामों में जोड़ने वाले और लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, उनकी तो जिंदगी बनाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को इस तरह से बरगलाते हैं, उन्हें तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े, बैर विरोध और टेररिज्म की घटनाओं के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कामों के लिए वही लोग जिम्मेदार होते हैं।
भीम कहते हैं कि आज 7 जुलाई है और मुझे भी याद आ रहा है वो वाक्या, वो घटना, वो हादसा जो ब्रिटेन में घटा। 7 जुलाई का दिन यहां ब्रिटेन की हिस्ट्री में एक बहुत ही दुखद और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए समन्वित टेररिस्ट अटैक्स को 777 लंदन बॉम्बिंग कहा जाता है। याद होगा बहुत सारे लोगों को, सुबह के बिजी वक्त में 4 सुसाइड अटैकर्स ने लगभग 1 घंटे के भीतर 4 धमाके किए। कितने ही परिवारों की धड़कनें रुक गई, माँ बाप चिंतित, शहर जैसे स्थिर हो गया था। 3 धमाके लंदन अंडरग्राउंड की ट्रेनों में हुए और 4th विस्फोट टेविस्टॉक स्क्वायर में एक डबल डेकर बस में हुआ। 52 मासूम लोगों की जाने गई। अब धमाके करने वालों से पूछे, क्या इन लोगों से तुम्हारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी? कुछ भी तो नहीं। 52 मासूम लोग मारे गए, 800 के करीब लोग जख्मी हुए। 4 हमलावर भी विस्फोट में मारे गए, खुद भी वो इन धमाकों का शिकार हो गए। लेकिन इन हमलों ने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया। इसके बाद आतंकवाद रोधी कानून और सिक्योरिटी व्यवस्था को और मजबूत किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। आपातकालीन सेवाओं के समन्वय और तैयारी में काफी सुधार किए गए। और अब हर साल 7 जुलाई को पूरे ब्रिटेन में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है, खासकर लंदन के हाइड पार्क के 7-7 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। कई जगहों पर मौन रखकर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवाई। कोई काम पर जा रहा था, कोई स्कूल कॉलेज, कोई अपने कारोबार से, कोई व्यापार से, कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई गलती नहीं थी उनकी। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि साहस, एकजुटता और मानवीय सहयोग की भी मिसाल बना जब उस दिन इमरजेंसी सेवाओं, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने मिलकर हजारों लोगों की मदद भी की, संकट की घड़ी में असाधारण धैर्य का परिचय दिया। पर बहनों भाइयों, एक सवाल तो उठता है, कौन बनाता है ये आतंकवादी? कौन इनके ब्रेन वॉश करके इनके दिलो दिमाग में इतना जहर भरता है कि वो मासूम लोगों की जान लेते हैं, ऐसे लोगों की जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वास्ता नहीं होता? वही जो बार बार कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, वो और हैं, हम और हैं। हमारी पहचान अलग है, हमारा भगवान अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा खानदान अलग है। नहीं भाई, खानदान अलग होता तो अपनी उंगली में जरा सा पिन चुभा के देखिए, जो खून निकलेगा ना वो उसी रंग का होगा जो मेरे खून का रंग है, जो सबके खून का रंग है, लाल। क्योंकि हमारा खूनदान एक है, हमारा खानदान एक है। ये जान लो, पहचान लो, इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। तुम अपनों की जान लेते हो, अपनों का नुकसान करते हो। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे, जिसके लिए आलेख हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीमदेव ने भिजवाया। भीम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई जब आप यूके आए थे और आपने आप जानना चाहा है कि आपके पुराने मित्र पवित्र सिंह सामरा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। भाई उनके सुपुत्र अगर सुन रहे हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चिंतन के साथ जोड़ा गया गीत फिल्म सबका साथी से लिया गया था, वही भावना गीत में भी शामिल थी जो हमारे आज के संदेश में थी, और कुछ यादें भी जुड़ी थी आज के चिंतन के आलेख के साथ। वो खतरनाक यादें भाई, आतंकवादी हमले की, 7/7 है आज, 7 जुलाई है आज, और बहुत सारे हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। तो भाई ये संदेश पढ़ने से पहले अमरपाल, अगर आप सुन रहे हैं अमरपाल सामरा, तो हमसे संपर्क कीजिएगा। आपके पिताश्री के पुराने दोस्त प्रोफेसर भीम याद कर रहे हैं उन्हें। स्लो से रानी पम्मी जी स्लो से याद कर रहे हैं, चिंतन की प्रशंसा में अपने भाई उद्गार लिख रहे हैं। प्रतिभा जी, पुरानी दुखद यादें ताजा हो गई, कहती है वाकई इंसान हैवान बन जाता है जब वो मासूम लोगों की जान लेता है। कहती आज मेरे पूज्य पिताश्री की भी पुण्यतिथि है, मन दुखी है, माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, भगवान महावीर उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में सदगति प्रदान करें। और प्रतिभा जी माता पिता के लिए हम यही कहेंगे कि माता पिता हमसे कभी अलग नहीं होते, क्योंकि हम उनसे बने हैं तो वह हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में वो विद्यमान है। रागनी जी आपका संदेश मिला जगदीश जी बुशी से, महेंद्र भाई क्रोइडन से, सुनीता शर्मा जी, नीला चौधरी जी, हरविंदर जी, हमारे चिंतन के रेगुलर लिसनर्स जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निर्मला, अरुण एंड भूपेंद्र पटेल, रंजन, जैस्मीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर जी आपका संदेश भी मिला है, थैंक यू वेरी मच। जानना चाहते हैं बलबीर की कौन सी फिल्म का गीत था, सबका साथी था फिल्म का नाम जो आज के चिंतन के साथ आपने सुना, और किसी और गीत का जिक्र करने, क्योंकि आपने संदेश थोड़ी देर पहले भेजा था, तो कौन सा धार्मिक गीत उसके बोल भी लिखे तो मैं ढूंढ के फिर आपको दोहरा दूंगा, बता दूंगा। रोहित जी संदेश मिला, हंसा बोरा, विजय घनोवा मॉरिशस वाले, अनिल सोनी वियाना वाले हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। भारत गंगाराम शहर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस शेख मलाड मुंबई से हमें संदेश भेज रहे हैं। हिना जी थैंक यू वेरी मच, करसन पिंडोरिया, हीटल सोलंकी, आंटी जी आपका पैगाम भी मिल गया है, पुनीता जी, सुनीता जी, अनीता जी, सारिता जी, जहीर खान साहब थैंक यू वेरी मच। भाई आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए आइए चिंतन को अब समेटते हैं और अपने मूल कार्यक्रम मनोरंजन की ओर लौटते हैं। चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो हमारा रेट नोट कीजिए, 127 रुपीज मैक्सिमम वी कैन गिव यू फॉर £1। और आप कैसे भिजवा सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनों को पैसे भिजवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.
3: ये है लाइका गोल्ड। Like a radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: देखिए साहब, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो फीफा मुकाबले चल रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में जो टीमें, छह टीमों का तो ऐलान हो चुका, पहुंच चुकी हैं। दो टीमें आज शामिल होंगी और आठ टीमें होती हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। पहले क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल, ये तीन जो है स्टेज बाकी हैं इस फुटबॉल महाकुंभ की। तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना और इजिप्ट का मुकाबला आज शाम 5 बजे होने वाला है और उनमें से जो टीम जीतेगी वो भी क्वार्टर फाइनल के लिए आगे बढ़ जाएगी। और दूसरा मुकाबला कोलंबिया और स्विट्जरलैंड के बीच होगा रात 9 बजे। इनमें से जो विजेता टीम होगी वो क्वार्टर फाइनल का जो ग्रुप बन रहा है, आठ टीमें जो क्वार्टर फाइनल के लिए भिड़ेंगी भाई, उनमें वो टीम शामिल होगी। तो इस तरह से आठ टीमें होंगी क्वार्टर फाइनल में, चार होंगी सेमीफाइनल में, दो टीमें रहेंगी फाइनल के लिए और एक टीम बनेगी चैंपियन। और थ्रू आउट इस सफ़र में हम आपको जोड़े रखेंगे फीफा खेलों के साथ, मुकाबलों के साथ, नतीजों के साथ। साथ में ये भी बता दें भाई, जो ये स्पॉन्सर करके जानकारी आप तक पहुंचाते हैं उनकी तरफ से ये स्पेशल ऑफर है, भूलना नहीं कि वो जो उनसे आप मशवरा करें तो 15 मिनट की लीगल एडवाइस जो है, कानूनी मशवरा, वो 15 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री देंगे अगर आप लाइक का मेंशन करेंगे उनसे बात करते हुए। तो डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस बाय मेंशनिंग लाइका टू आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ। उनका नंबर आ रहा है, नोट की लीजिएगा, अभी आ रहा है।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.

0: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और साहब, गीत सुनाने से पहले हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं, और आप कौन हैं जो जानना चाह रहे हैं कि भाई वो फोन नंबर जो आप रैक लॉ का बताते हैं, बड़ा फास्ट बताते हैं, भाई मैंने वो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन में है, कमर्शियल्स के रूप में आप सुनते हैं, लेकिन अगर नहीं नोट कर पाते हो तो फिर से बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं 0203-345-2000 पर आप लाइका मेंशन करके और 15 मिनट का कानूनी मशवरा बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं। लाइका ज़रूर मैंशन कीजिएगा, 0203-345-2000, दैट्स देयर नंबर, रैक लॉ।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a song bhai, aulaad walo phoolo phalo. Aur ye geet kaun si film se tha, ek phool do mali, ha? Ha. दरअसल बात यह है कि रवि साहब की बनाई धुनों पर ये जो जो भिखारी लोग होते हैं भाई, दुआएं देते हुए कुछ मांगते हैं, तो ऐसे कई गीत रवि साहब ने बनाए और वो इतने हिट हुए. बल्कि सच पूछो तो इनका जो एक गीत हिट हुआ था बहुत ज़्यादा, वो था ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे. फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उन फिल्म बहुत पुरानी फिल्म थी. बाली भाई जानते होंगे, पुराने लोग पुरानी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट, फिर फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं. उन्होंने अपने घर का नाम भी उसी फिल्म के नाम पर रखा हुआ है, रवि साहब ने, मुंबई में. और वो गीत जो है वो इतना फेमस हुआ था कि रवि साहब ने खुद बताया था, बोले एक बार हम कार में मरीन ड्राइव पर जा रहे थे तो साथ में मेरे राजेंद्र कृष्ण थे जो गीतकार हैं, और भी एक दो दोस्त थे, तो हम चार लोग गाड़ी में जा रहे थे. ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी तो एक भिखारी आके कटोरा सामने कर देता है, खनकाता है उसमें कुछ बड़े सिक्कों को और कहता है ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे. तो राजेंद्र कृष्ण कहते हैं कि रवि साहब दे दो, इस पैसे से बहुत कमाया है आप, इस गीत से बहुत कमाया है आपने. तो कह उसको पैसे दिए भाई, वो कहते हमारा ही गीत गा के हमसे पैसे मांग रहा था वो भिखारी. लेकिन और भी कई गीत ऐसे हैं, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. ये गीत तो शायद लिखा भी रवि साहब नहीं था भाई. रवि साहब की बनाई धुनें जो है कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरती हैं. और कुछ ख़ास तरह के गीत जैसे विदाई गीत हैं या फिर कुछ रोमांटिक गीत हैं, हर तरह के रंगों में कुछ गीत रवि साहब ने खुद भी गाए हैं, कभी सुनवाएंगे प्रोग्राम में. संगीतकार रवि की बात कर रहे हैं हम. और साहब ये गीत औलाद वालों फूलो फलो, ये भी धुन उन्होंने बनाई और अमर हो गया गीत, जब भी सुनवाते हैं बड़ा नया लगता है. आगे बढ़ते हैं.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: और भाई याद दिला दें आपको, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड आ चुका है, पॉडकास्ट का नया एपिसोड नंबर 23, होस्टेड बाय दीप राजा. राइज इन विमेंस क्रिकेट, महिलाओं के क्रिकेट में भाई आप देख रहे हैं कि इतना लोकप्रिय हो रहा था, स्टेडियम को खचाखच भरे देखकर लगता था कि अब इस क्रिकेट में भी दर्शकों की रुचि और स्पॉन्सर्स की रुचि, खिलाड़ी तो आ ही रहे हैं एक से बढ़ के एक आगे. तो उन पर चर्चा करने के लिए हमारा एपिसोड 23 जरूर देखिएगा. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर अवेलेबल है.
0: Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Leica Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe. Cool music for a super hot summertime. On the Like a Radio Network.

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: मनोरंजन।

0: ए जिंदगी गले लगा ले, सुरेश वाडकर का स्वर था भाई, क्या शब्दावली थी। और बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए। पहला गीत था, हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई, फिल्म का नाम बता रहा था। जो दो गीत सुनवाए उनमें पहला गीत राजा रानी फिल्म से था, स्वर्गीय मुकेश और लता जी की आवाज़ों में, और ये दूसरा गीत था फिल्म, क्या नाम था, सदमा, दैट वॉज द नेम ऑफ द फिल्म, सुरेश वाडकर गा रहे थे। तो इस तरह से भाई तीसरे घंटे और अंतिम घंटे का आगाज हमने किया इन गीतों से। आज मैं देख रहा था कि आज मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 7 तारीख है। आज कई लोगों के जन्मदिन भी हैं, और वही दुर्घटनाओं का जिक्र तो हमने किया। शुभ घटनाओं का जिक्र करें तो आपको बता दें कि आज कैलाश खैर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, गायक कलाकार सुरीले सिंगर कैलाश खैर। और भाई उनके अलावा क्रिकेट के जगत में MS धोनी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। 7 जुलाई को 1981 में रांची में जन्मे थे MS यानी महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है भाई, संघर्ष की एक कहानी है, इनका जीवन भी फिल्म बन चुकी है। ये किसी समय रेलवे में काम करते थे, टिकट चेकर के रूप में थोड़े दिन इन्होंने काम किया, लेकिन क्रिकेट से अपना सम रिश्ता बनाए रखा। आज 7 जुलाई को और किसका जन्मदिन है, मैं ढूंढ रहा था कि किसी विशेष व्यक्ति का, भाई वैसे जो हमारी 8वीं पातशाही सिख धर्म में गुरु हरकिशन जी का भी अवतार यानी जन्मदिन आज ही पड़ता है। और इसके अलावा और भी कई लोग, एक और नाम मुझे याद आ रहा है, श्रीकांत बोला, इनके ऊपर मैंने चिंतन में एक बार एक प्रसंग भी सुनाया था। श्रीकांत बोला वो एक ऐसा नौजवान है जो आँखों से तो दृष्टि उनके पास नहीं है, लेकिन मन की दृष्टि बड़ी तीव्र है, और उनकी विल पावर तो क्या कहें साहब। अब तो वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, अपनी कारखाने हैं, विदेशों में भी उनका भाई कारोबार है और भारत में भी। लेकिन एक समय था कि इन्हें मनहूस मान के इनके माता पिता त्यागने लगे थे इन्हें, और बिना आँखों के इनको स्कूल कॉलेज में भी दिक्कत आई पढ़ाई लिखाई में। पर ब्रिलियंट थे, साहसी थे, दमदार थे साहब, और अपनी बात के धनी थे। तो साहब जिद करके इन्होंने शिक्षा मंत्रालय में खलबली मचा दी थी, शिक्षा के क्षेत्र में अपने लिए सीट क्रिएट करवाई कि मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ, बंदा हूँ, बड़ा तेज़ दिमाग है मेरे पास। तो साहब बड़े कामयाब व्यक्तित्व के स्वामी श्रीकांत बोला का भी जन्मदिन आज ही है, 7 जुलाई 1991 में साउथ इंडिया में जन्मे थे ये। अनिल विश्वास, वो भी संगीतकार भाई, आज ही के दिन जन्मे थे, कंपोजर, 1914 में जन्मे थे। और आपके घर परिवार में अगर किसी का आज जन्मदिन पड़ता हो तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ द डे बधाई स्वीकार कीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं, अब भी रेट अच्छा चल रहा है, पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे हैं अपने लोगों को भारत में। भाई वो कहते हैं कि आज का रेट नोट कीजिए, इस समय एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.8 रुपीज, 126.80 रुपये। यू कैन भाई सेंड द मनी वाया ब्रांच ऑनलाइन और भाई यूजिंग SBI योनो मोबाइल ऐप, TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a goat.

0: दो बदन फिल्म का गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ और रवि साहब की बनाई हुई धुन पर सवार ये आवाज रफी साहब की थी। और बहन भाइयों इस सप्ताह के कलाकार हैं शकील बदायूनी गीतकार, और क्या गीत लिखे साहब। बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 1916 में और 1970 में 20 अप्रैल के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया। और भाई अपनी ज़िंदगी में जो गीत लिखे ना, कई गीत तो उनकी शायरी जो है उनकी ज़िंदगी का तर्जुमा थी, वो खुद कह के गए। और ये गीत जो सुना भाई, इसके अलावा रवि साहब के साथ उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और उन्हीं में से एक गीत था चौदहवीं का चांद हो, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेस्ट गीतकार थे शकील बदायूनी और बेस्ट संगीतकार थे रवि साहब। वो गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में था। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे गीत आपको सुनने को मिलेंगे इस सप्ताह। जुड़े रहिएगा आप लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड के साथ।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले गा रहे थे गीत भाई फिल्म राजकुमार, वो पुरानी वाली 1964 की फिल्म, और शम्मी कपूर थे शायद हीरो और साधना, आई एम नॉट श्योर भाई, इतनी पुरानी फिल्मों के बारे में मैं आजकल का नौजवान क्या जानू हाँ। किरण कहती हैं आपके गीतों में पुराने जमाने की बातें जो है वो लौट आती हैं, ये लाइका गोल्ड पर जो गीत सुनवाए जाते हैं ना, एक कहानी लफ्जों में उतर करके दिल में समा जाती है। किरण जी आप सुनती हैं जानकर बहुत अच्छा लगा, सुनते रहिएगा। और निर्मला कहती हैं जिस गीत का आप जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि रवि साहब के घर का नाम भी वही है, तो नोट कीजिए वो उसका नाम है वचन। क्या बढ़िया वचन निभाया आपने। ऐसा है निर्मला जी, वो याद तो था मुझे, शायद मैंने पहले जिक्र भी किया, लेकिन क्या है कि भूल जाता हूँ कभी कभी ना, बिल्कुल एकदम माइक के सामने दिमाग खाली हो जाता है। होता है ऐसा कभी कभी। नहीं नहीं नहीं नहीं, उम्र का कोई असर नहीं, देखिए आप इधर उधर उधर नहीं उधर नहीं। थैंक यू निर्मला जी। और हमीदा फ्रॉम बेल्जियम आप सुन रही हैं, ब्लेस यू मेक अस लाफ एंड क्राई। हाँ बात तो दोनों ही है भाई, दोनों कुछ दर्द भरे गीत और कुछ दर्द भरी यादें आके रुला जाती हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि पैचअप करें उसे कुछ चटपटी बातों से, अटपटे गीतों से भाई आपको हंसाने की कोशिश भी करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai like a gold.
0: लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं आप मनोरंजन विद रवि शर्मा। और साहब एक संदेश भी तो था ना हमारे पास, कहाँ गया रे उस संदेश जो देना था आपको। हाँ भाई, हमारे यहाँ जो हमारे राम जो शो आ रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द दिस शो हमारे राम, स्टारिंग एक्लेम्ड एक्टर आशुतोष राणा, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं भाई आशुतोष राणा, और संस्कृत में ही भाषा होती है उनकी, और राहुल आरभुचज आशुतोष राणा जहाँ रावण बने हैं तो राहुल उसमें राम बने हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 9 and 12 July एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ में है भाई, अपनी टिकटों की व्यवस्था कर लीजिएगा, बहुत अच्छा शो है, बहुत नाम कमा चुका है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Pran sahab ki yaad aayegi.
4: Yaari hai imaan mera, yaar meri zindagi.
0: ऐसी फिल्म भाई जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन को चोटी के सितारों में शामिल करवा दिया। और मुझे याद है भाई जया भादुरी, जया बच्चन जी यहाँ लंदन में स्टेज पर आई, देवानंद साहब के लिए वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी प्रोग्राम में देवानंद साहब ने अपनी किताब लिखी हुई, जो उनकी किताब थी उस पर साइन करके मुझे भेंट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जया बच्चन जी ने देव साहब की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और आखिर में जानते हैं उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर लीविंग जंजीर। जंजीर के लिए कहते हैं कि देव साहब को चुना गया था, उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार किया, व्यस्त है ज़्यादा, और ये फिल्म अमिताभ बच्चन के हिस्से में आई तो साहब रातों रात जो है अमिताभ बच्चन चोटी के सितारों में शामिल हो गए, एंग्री यंग मैन। पर ये गीत प्राण साहब पर पिक्चराइज हुआ था, जिस यार की वो चर्चा कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन।

0: वेल भाई, याद दिला दूं आपको कि आज दिलीप साहब की पुण्यतिथि है, दिलीप कुमार साहब की, और हमारे बाली भाई जो है सामग्री जुटा रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं उनके बारे में। लेकिन अभी जो साउथ होल ट्रैवल वालों का संदेश है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साउथ होल ट्रैवल इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज़ लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथ होल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: ये है
3: Leica Gold
0: travelhubworld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit travelhubworld.com.
5: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3, 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra-2026. Jai Shri Jagannath.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
12: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और मैं रेट बता देता हूँ आपको भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.1 रुपीज, यानी 127 रुपए 10 पैसे। पाकिस्तानी करेंसी में 372.18 रुपीज, श्रीलंकन रुपए 448.16, बांग्लादेशी टके 164.97, अफगान अफगानी 85.24 एंड केनियन शिलिंग्स 173.02।
4: Laika Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Laika Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: गोल्ड भाई, सोने का भाव इस समय चल रहा है। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ, बताइए इसी नया रेट क्या है? अभी थोड़ा बदला है क्या? वो ही चल रहा है, लगता है कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है। वेल दैट्स 99.10 रुपी पाउंड्स पर ग्राम।
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: चिंतन का गीत है भाई, चिंतन में काम आएगा, कभी फिर सुनवाया जाएगा।
6: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
7: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410।
12: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
13: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
12: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
13: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
12: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
13: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style. style.
12: Visit gargelscouture.co.uk.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
16: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Like a Gold.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहनों भाइयों, अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है।

थोड़ा सहने दो गम जुदाई का, प्यार इतना भी ज्यादा ना करो। थोड़ा सहने दो गम जुदाई का, प्यार इतना भी ज्यादा ना करो। ये ना हो मैं खुशी से मर जाऊं, आज रोकने का इरादा ना करो। मैंने भाइयों, जैसा मैंने बताया कि आज मोहम्मद यूसुफ खान यानी प्रोफेशनली नोन एज दिलीप कुमार अभिनय सम्राट की पुण्यतिथि है, और बाली भाई बहुत सारी सामग्री उनके बारे में जुटा कर ला रहे हैं, पर रवि शर्मा साहब अब जा रहे हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव ए सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम मी नाउ।

0: So there you go. We are remembering none other than the great Dilip Sahab, Yusuf Khan. It's his death anniversary today. He was born on 11th of December 1922 in Peshawar. 98 years was the age when he passed away. He was such a, you can say, fighter. Yes, he spent a few years, last years, in hospitals, in and out. But then he always used to come out smiling. 7th of July 2021 is when he decided to make his way to heavenly abode. Dilip Kumar saab ke liye main jo bhi bolun kam hai. He was the first actor to charge 1 lakh rupees, equivalent to today's, you can say, nearly 90,000 pounds per film. Yes. And मैंने जो शुरुआत की है, we are going backwards. उनके 1980s से लेकर 1990s, 1980s to 70s. फिर next hour में we will go downwards towards his earlier films. So we'll go into a little bit of nostalgia in the second hour. लेकिन उनकी फिल्में अगर हम देखने जाएं तो हर एक सुपर डुपर फिल्में थी. अब ये तो सबको मालूम है कहाँ जन्मे थे और फिर उनके डैडी का एक फ्रूट का बिजनेस था और फिर वो डैडी के साथ फ्रूट मर्चेंट थे, आई वुड से लैंडलॉर्ड थे. एंड ही हैड ऑर्चर्ड्स इन पेशावर इन एंड दियोलाली. अब ये बातें करने जाऊंगा तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें रह जाएंगी. इनकी इनके अवार्ड्स कौन से थे, इन्होंने जो कामयाबी हासिल की उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. अब उनके टैलेंट्स देखें तो आइडेंटिफाइड बाय दिलीप कुमार साहब, जिन एक्टरों के टैलेंट्स इन्होंने रिकग्नाइज किए एंड दे बिकेम बिग एक्टर्स, देवर जॉनी वॉकर साहब, धर्मेंद्र जी, कादर खान जी एंड टुनटुन. उमा देवी खत्री, उनका नाम टुनटुन इन्होंने रखा था. जी हाँ. एंड ही वॉज अपॉइंटेड द शेरिफ ऑफ मुंबई इन 1980. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी माइट नॉट नो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. फिल्म फेयर अवार्ड्स इनके हाइएस्ट अवार्ड्स थे 8 तक. 1954 में फिल्म दाग, 1956 में फिल्म आज़ाद, 1957 में फिल्म देवदास, 1958 में नया दौर, 1961 में कोहिनूर, 1965 में लीडर, 1968 में राम और श्याम और 1983 में शक्ति फिल्म. अब 1987 और 88 में फिल्म फेयर अवार्ड्स थे ही नहीं. He was the first person to receive a Filmfare Award in 1954 for film Daag. और इनकी कामयाबी अगर मेजर करने जाएं तो इनको कोई नहीं छू सकता. जी हाँ, इनकी जो मेथड एक्टिंग, इनकी प्रथा थी, काफ़ी लोगों ने उनको कॉपी किया. His style of acting. जी हाँ, मेथड एक्टिंग इट्स अ You can say built on Stanislavski's system. एक बंदा था Stanislavski, उनकी एक सिस्टम थी, a range of rehearsal techniques to encourage sincere and expressive performances by understanding and experiencing a character. जो emotions और motivation को डिवेलप करता है. इट वॉज डिवेलप्ड बाई दिस रशियन एक्टर डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की. एंड देन थ्रू हिज बुक्स एन एक्टर प्रिपेयर्स देन बिल्डिंग अ कैरेक्टर एंड क्रिएटिंग अ रोल. 1957 की पब्लिकेशन जो थी. एंड मेथड एक्टिंग वॉज पायनियर्ड इन इंडिया बाय दिलीप कुमार साहब। फिल्म दीदार, मुगले आजम, इन फिल्मों में आप देखो तो इन्होंने ये एक्टिंग मेथड एक्टिंग डेवलप किया था। Nobody knew this, but inspired were Balraj Sahni, Rajendra Kumar, Manoj Kumar, Dharmendra ji, Amitabh Bachchan. Manoj Kumar ji ne actually kaha bhi tha, Shah Rukh Khan, Kamal Hassan, phir Anil Kapoor, Aamir Khan, Nasiruddin Shah, Nawazuddin Siddiqui, one of the latest actors. They all took this method acting which was pioneered by Dilip Kumar Sahab. And I could go on and on talking about method acting. Lekin inki jo hum inki jo winning ability jo thi Filmfare wins mein 8 Filmfare awards. जैसे शाहरुख खान के 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, अमिताभ बच्चन 5 अवार्ड्स, ऋतिक रोशन और रणबीर 4 अवार्ड्स, राजेश खन्ना 3 अवार्ड्स, नसीरुद्दीन शाह 3, आमिर खान, रणवीर सिंह, ये सब ने 3 अवार्ड जीते और राज कपूर ने 2 अवार्ड्स जीते थे, देवानंद साहब ने, अशोक कुमार साहब, सुनील दत्त जी ने 2-2 अवार्ड्स जीते थे, लेकिन दिलीप कुमार साहब 8 अवार्ड्स। और अगर देखा जाए तो 8 से ज्यादा ही होने चाहिए थे, क्योंकि नॉमिनेशंस देखो, यू नो मधुमति फिल्म, अब जितने अवार्ड्स इनको नॉमिनेट किए गए थे जिनके लिए, उसके सामने किसने जीते थे वो मैं आपको बताऊंगा एज वी गो अलोंग। जुड़े रहिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार साहब, 7th of July 2021 is when he passed away.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And £1 in your British sterling pound can get you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back. Dhamal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Southall Travel.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel. At all protected.
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
13: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
13: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
13: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
13: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
14: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
15: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
14: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
16: Chai break ho ya busy work day. Sabko chahiye ek perfect cup of chai.
17: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
16: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
16: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
18: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
19: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: never seen.
1: वाह वाह वाह, ऐसे गाने सुनकर ना दिल खुश हो जाता है, बिकॉज यू एक तो होता है कि हम साथ में गाते हैं इन गानों के, क्योंकि हमें इतने सालों से लिरिक्स सब याद रह जाती है, और दिलीप साहब की याद में और भी दिल खुश हो जाता है जब हम ये गाने आंख बंद करके दिलीप साहब को देख रहे हैं और गाना गा रहे हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ही हैड नॉमिनेशंस ऑफ अबाउट 12 नॉमिनेशंस फॉर 12 फिल्म्स, जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन सामने किस एक्टर को अवार्ड मिला था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मधुमती फिल्म, आपने अभी गाना सुना सुहाना सफर और ये मौसम हसी, दैट वाज एन अवार्ड विनिंग आई थिंक रोल दैट ही प्लेड, लेकिन उनको नॉमिनेशन मिला। अब नॉमिनेशन उनको मिला तो जीता कौन, हु गॉट द अवार्ड, तो देवानंद साहब को उस साल में अवार्ड मिला था 1958, एंड द अवार्ड वाज काला पानी, एंड पैगाम फिल्म 1959 की, उसमें राज कपूर जी को अवार्ड मिला था फॉर फिल्म अनाड़ी, और दिलीप साहब को नॉमिनेशन मिला था। मुगले आजम, आई मीन द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर नोन, उसमें उनको

0: नॉमिनेट किया गया, लेकिन कौन जीता था, यू गोना लाफ, दिलीप कुमार साहब ही जीते थे उस साल, लेकिन फॉर फिल्म कोहिनूर। उनको दो नॉमिनेशंस दिए गए थे, मुगले आजम और कोहिनूर, और कोहिनूर के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गंगा जमुना, अभी गंगा जमुना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड अवार्ड ना मिले तो पीपल राइट कर देंगे, ऐसी बात हो गई थी। लेकिन राज कपूर जी को अवार्ड मिला था फॉर जिस देश में गंगा रहती है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई सपोज। एंड देन दिल दिया दर्द लिया 1966 की फिल्म जो थी, उसमें दिलीप साहब को नॉमिनेशन मिला, लेकिन देव साहब को मिल गया फॉर फिल्म गाइड, वो भी कॉम्पिटिशन सही था। एंड देन फिल्म आदमी, फिल्म आदमी और फिल्म संघर्ष, ये दोनों फिल्में 1968 की, उसमें दोनों में उनको नॉमिनेशन मिला, फिल्म आदमी के लिए और फिल्म संघर्ष के लिए, लेकिन शम्मी कपूर जी को मिला फिल्म ब्रह्मचारी के लिए, विच इज़ वेल अंडरस्टूड। यस, शम्मी जी डिड डिजर्व एन अवार्ड फॉर ब्रह्मचारी। फिल्म गोपी 1970, उसमें उनको नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड मिला राजेश खन्ना को फॉर फिल्म सच्चा झूठा, आई मीन ही वॉज द हैपनिंग एक्टर दोज ईयर्स। एंड देन सगीना, फिल्म सगीना, आपको मालूम है सगीना महातो एक साउथ इंडियन की फिल्म थी, फिल्म सगीना में इनको 1974 में नॉमिनेशन मिला, लेकिन राजेश खन्ना ले गए अवार्ड फॉर फिल्म आविष्कार, जी हाँ। एंड देन फिल्म बैराग 1976 की, वो भी अच्छा रोल था, लेकिन लेट्स फेस इट, संजीव कुमार को मिला अवार्ड फॉर फिल्म अर्जुन पंडित। एंड देन फिल्म मशाल 1984 की, मशाल फिल्म में उनको नॉमिनेशन मिला, तो अनुपम खेर को अवार्ड मिला फॉर फिल्म सारांश। सारांश वॉज अ ब्यूटिफुली एक्टेड फिल्म बाय अनुपम खेर एंड ही डिजर्व द अवार्ड। फिल्म सौदागर, दैट वॉज 1991 की फिल्म सौदागर, उसमें अमिताभ बच्चन जी को मिला फॉर फिल्म हम। अब मैंने कुछ फिल्में जो मेंशन की, दैट वॉज लाइक सौदागर फिल्म, दोज वर फिल्म्स दैट वर डायरेक्टेड बाय सुभाष गई। सुभाष गई और दिलीप कुमार साहब ने अच्छी फिल्मों में अदाकारी निभाई, दिलीप कुमार जी ने सुभाष गई की डायरेक्शन के नीचे। फिल्म आई थिंक 1982 में थी फिल्म विधाता, जिसमें वो बने थे शमशेर सिंह, विद संजीव कुमार थे वहाँ, एंड और कौन था, आई थिंक विद संजीव कुमार ही थे आई थिंक, एंड संजय दत्त, वो गाना था ना हाथों की चंद लकीरों पे, हाँ संजय दत्त भी थे उसमें और शम्मी कपूर जी भी थे। एंड देन 1986 की फिल्म अगेन सुभाष गई डायरेक्टेड द फिल्म, फिल्म कर्मा, उसमें तो ही वॉज अ जेलर एंड नूतन जी के साथ एक्टिंग किया था, जैकी श्रॉफ भी थे, अनिल कपूर भी थे। एंड देन फिल्म सौदागर 1991 की, एंड दैट वॉज अगेन अ फैबुलस फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार, दोनों कुमार कटे हुए थे, दैट वॉज दिलीप कुमार एंड राजकुमार, दोनों भीड़ गए थे उस फिल्म के अंदर, व्हाट ए फिल्म इट वाज। एंड इट वाज द डेब्यू ऑफ मनीषा कोइराला, सौदागर फिल्म याद है ना, एंड विवेक मोशरान, इन दोनों का डेब्यू था, एंड दिलीप कुमार एंड राजकुमार, इन दोनों की अदाकारी थी। दैट वाज अनदर वेरी मेमोरेबल फिल्म सौदागर, एंड लाइक आई सेड ही गॉट नॉमिनेशंस फॉर All these films like Saudagar, lekin Amitabh Bachchan got the award for film Hum. I hope you're enjoying the tribute that I'm doing of Dilip Kumar Sahab for his 5th death anniversary. On Like a Gold, main hoon Bali Brambhat, aapki khidmat mein with Gold Afternoons, which is sponsored by Jaimin, available on 1035 medium wave, DAB, Alexa, Google Home and LaikaGold.com. And 364th day on Leica Radio Midlands.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: Well, you know what happened yesterday, and that was a match of matches. That was Spain versus Portugal, and Spain won. Portugal is out. Then came Belgium versus United States of America. Belgium scored 4 goals, United States 1 goal, so Belgium won. Now the last 2 matches of the round of 16 are Argentina versus Egypt at 5 p.m. today and Switzerland versus Colombia at 9 p.m. today. In dono matches ke baad shuru hoga quarterfinals. That is FIFA 2026. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: Gold Afternoons.
5: Gold Afternoons.
4: Proudly sponsored by Jemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Aa September, Paris ma ithihas lakhai rahyo chhe.
12: BAPS mandir no opening. And Star Tours tamne lai jai rahyo chhe aap pavitra yatra par.
14: Europe na 3-9 divas na tours.
12: France, Switzerland, Italy and Germany saathe.
14: Darshan paan and Europe paan.
12: Seats jaldi bharai rahi chhe. Aaj ish book karo Star Tours saathe.
14: Call 020-8900-2323. The Star Tours.
12: Travel once and you will travel again and again.
2: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
15: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
16: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

फिल्म कोहिनूर, वी आर रिमेम्बरिंग दिलीप कुमार साहब ऑन हिज फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी। नौशाद जी का संगीत, शकील बदायूनी की लिरिक्स। अब नेक्स्ट गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दैट वॉज द लास्ट सॉन्ग दैट मुकेश जी सैंग फॉर दिलीप कुमार साहब। दिस वॉज फिल्म यहूदी।

मोहब्बत का एक गाना मैंने चुना है. थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस. आई एम ग्लैड यू लाइक माय सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ दिलीप कुमार साहब. इन द फर्स्ट आवर इट वाज ऑल मॉडर्न सॉन्ग्स एंड देन बैकवर्ड्स अगेन. सज्जाद हुसैन का संगीत इन द नेक्स्ट वन संगदिल फिल्म. तलत महमूद जी ने गाया. फिल्म है संगदिल. राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स और सज्जाद हुसैन का संगीत.

हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि सैंडी शाह जी का विंटेज शो चल रहा है, लेकिन दिलीप कुमार साहब है तो मुझे करना ही पड़ता है। बट थैंक यू फॉर लाइकिंग। यस, ऑन अ क्वाइट अ चिरपी नोट, घोड़ा गाड़ी फिल्म ऑन 1952, नौशाद का संगीत और शकील बदायूनी की लिरिक्स।

0: मजा है ना आपको, क्योंकि दोनों गाने हैं ना, मतलब पुरानी एक फिल्म श्री 420 उसका 1958 का जो बीट है, चिकता तक चिकता 6/8 बीट जो होती है उसके अंदर बाजीगर फिल्म में वो तेरे चेहरे पे इन अ मॉडर्नाइज्ड वे, बट देन द ट्रीटमेंट इज़ अलग, लेकिन बीट वही है. सो बड़ा मज़ा आता है व्हेन यू लिसन टू सॉन्ग्स विद सिमिलर बीट्स, बट यू डोंट रियलाइज व्हाई यू आर एंजॉयिंग इट, बिकॉज एक के बाद दूसरा गाना आता है, आपके मन में वो बीट चल रही है एंड देन सेकेंड गाना शुरू होता है और वो बीट कंटिन्यू रहती है. सो लास्ट 12 मिनट आपने जो सुने दो गाने, उसमें सेम बीट आपके जहन में चलती जाती है, तो उसका मज़ा ही अलग होता है. और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ही चीज़ें नोटिस करके आपके सामने पेश करने का. सो सो हैप्पी दैट यू एन्जॉयड माई सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स फॉर दिलीप साहब. मैंने क्या किया था कि सोचा कि इन्होंने एक्टिंग किया था 1940s से लेकर 1990s तक, तो ये 50 साल मैं कैसे आपके सामने पेश करूं. एंड देन सडनली आई सेट डाउन एंड आई थॉट अबाउट इट लास्ट नाइट एंड आई थॉट लेट मी गो डाउनवर्ड्स. मैं 1990s से शुरुआत करूँगा इन द फर्स्ट आवर एंड देन गो इन टू द सेकेंड आवर रिसीडिंग बैकवर्ड्स. सो यू एन्जॉयड इट एंड आई एन्जॉयड इट टू, बिकॉज क्वाइट अ चैलेंज टू प्रेजेंट ऑल सुपर डुपर सॉन्ग्स ऑफ दिलीप साहब. And it quite worked. I'm quite happy about that because your message is said so. Next, हमारे artist of the week जो है शकील बदायूनी जी, उनका मैंने एक गाना चुना है. फिल्म है दिल दिया दर्द लिया. अब उसके अंदर एक डायलॉग आता है, वो डायलॉग है दिलीप कुमार साहब का और जॉनी वॉकर साहब का. तो वो डायलॉग पहले मैं आपको सुनाऊंगा, गुस्ताखी माफ़, क्योंकि गाने से पहले अगर मैं डायलॉग सुनाऊंगा तो आपको गाना सुनने का मज़ा और ही आएगा कुछ. एंड उसमें जो संगीत भी इतना प्यारा है और आवाज़ है रफ़ी साहब की, इनका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था. नौशाद साहब, दिलीप साहब और शकील बदायूनी, इनकी लिरिक्स वगैरह बहुत खूबसूरत. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, टू टॉप इट ऑल, रफ़ी साहब, दैट्स राइट. सो यू गॉट इन फॉर अ ट्रीट विद आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: So now, looking at football, FIFA 2026, we've got Argentina versus Egypt at 5 p.m. And then we got Switzerland versus Colombia at 9 p.m. And after these two matches, we shall shift from the round of 16 to the quarterfinals. This is one of the best, I think, FIFA World Cup that I have actually witnessed, and it was very successful in the United States of America, in Canada and Mexico, that all the matches were staged. So keep enjoying, and don't forget you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: श्री जगन्नाथ सोसाइटी UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
5: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me.
9: Southall Travel, Atoll Protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी। मीनार ज्वेलर्स, द डायमंड specialists, call 020-8767-2142.
13: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station, ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: अब जैसे मैंने वादा किया था, अगला गाना जो है वो फिल्म है दिल दिया दर्द लिया, जहां दिलीप साहब जॉनी वॉकर साहब के साथ बात कर रहे हैं और नाराज़ है और कह रहे हैं कि मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, और जॉनी साहब उनको कैसे मना रहे हैं वो सुनिएगा।
15: कभी नहीं भूल सकता, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता।
16: ये ना कहिए, भूल तो सकते हैं आप।
15: कौन सी ऐसी चीज है जो इस जिल्लत के नक्श को मेरे दिल से मिटा सकती है जो मुझे इस घर से मिली है?
16: चीज आपके सामने मौजूद है, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में।
0: और फिर बोतल का सहारा लेकर दिलीप साहब ने ये गाना गाया। दिलीप साहब ने, मतलब के रफी साहब ने, कभी शराब की एक बूंद नहीं उन्होंने छुई और गाना गाया।

0: Our artist of the week happens to be शकील बदायूनी. उम्मीद है आपको गाना पसंद आया विद द डायलॉग. दिल दिया दर्द लिया 1966 नौशाद जी का संगीत, रफी साहब की आवाज.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक। आज हम मनाएंगे साथ में वूहू टेरिफिक ट्यूसडे। सो टेरिफिक ट्यूसडे के लिए क्या तैयार हैं आप सब? अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, हमारे सारे के सारे दोस्त और दोस्तनियाँ आ गए हैं यहाँ पे, तो आइए, बिल्कुल स्वागत है, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जहाँ, आप बस रेडियो ट्यून इन कर लीजिए और दीदी आप जो सवाल पूछेगी उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो बिल्कुल प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और आज कौन सा सवाल पूछूंगी? अरे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले पूछे कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? आई नो धूप है, समर हॉलीडेज़ हैं अभी, तो धूप तो रहेगी, तो चलिए इस धूप के साथ में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं और अब जैसे चल रहा है वैसे टाइम निकाल लेते हैं विथ वेदर, क्योंकि शाम की आपकी एंटरटेनमेंट तो पक्की, उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है ना, पूरा का पूरा दारोमदार, हाँ सी आई मिस्ड माई वर्ड, पूरा का पूरा दारोमदार मैं अपने कंधे पे लेती हूँ। 7 to 10 कम्प्लीटली ये जो टाइम है इसमें एंटरटेनमेंट प्रॉमिस्ड है, अच्छा म्यूजिक प्रॉमिस्ड है, गपशप इंटरेक्शन प्रॉमिस्ड है, एंड दिस इज योर शो, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर शो विद अश्विनी। ओके, आज का सवाल आप सभी के लिए, एंड यस आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी लाइफ थियोरी पे मैं रोज बात करती हूँ, बिल्कुल लाई हूँ आप सबके लिए बड़ी प्यारी सी शॉर्ट एंड स्वीट लाइफ थियोरी भी लेके आई हूँ, लेकिन सवाल पूछेंगी मैडम आज? बिल्कुल पूछेंगी सवाल। सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि कई लोग हैं जो इन पर्सन जाके शॉपिंग करने में बिलीव करते हैं, और कई लोग जाते हैं कि भाई हम अपने घर पे अपने लिविंग रूम में जाएंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे, कहीं भी बैठ के लैपटॉप खोलेंगे भाई उसमें क्या है, और ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। सो मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या आप इन पर्सन जाके शॉपिंग ज़्यादा करते हैं? मुझसे पूछेंगे तो मैं दोनों भी कर लेती हूँ बिल्कुल, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग मैनी अ टाइम्स जो है, अच्छा नीलेश जी पूछ रहे हैं दीदी, हाँ अरे दीदी वर्ड चलता है नीलेश जी आजकल, तो आपने आपको पता नहीं कितनी सारी रील्स में होता है दीदी ये करेंगी दीदी वो करेंगी, दैट इज़ दीदी। ओके, सो ऑनलाइन शॉपिंग जब चीज़ें हैं तब आई एम ओके विथ यू नो वस्तुएं थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू स्पेशली क्लोथिंग आई लव टू गो इन पर्सन टू द क्लोथिंग स्टोर्स एंड सी द टेक्सचर एंड ऑब्वियसली द साइज एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। सो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या आप इन पर्सन जाके शॉपिंग करना बिलीव करते हैं, आप अपने अपने कारण भी मुझे दे सकते हैं। ओके, मैंने जैसे कहा कि प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया लग चुकी है, वॉल्यूम अप रखिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 126 इंडियन रुपी एंड 80 पैसे 126.80, एंड डोंट फॉरगेट कि आप यू नो यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती ही होती हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: तो अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच में फुल टाइम हो चुका है. अर्जेंटीना ने दागे 3 गोल एंड इजिप्ट ने बनाए 2 गोल. ऑब्वियसली अर्जेंटीना इज बैक, बिल्कुल जीत चुके हैं गेम. और अगला मैच होने वाला है कोलंबिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच 9:00. डोंट फॉरगेट यू गेट योर 15 मिनट्स ऑफ फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक हर.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold.
1: बिल्कुल मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है. 7:24. इट्स 7:24. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. आज कौन सी लाइफ थियरी पे बात करने वाली है? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. और ये लाइफ थियरी कही जाती है द ऑर्बिट थियरी, या चलो इसको द सर्कल थियरी नाम दे देते हैं. ठीक है, तो सर्कल थ्योरी या ऑर्बिट थ्योरी, सबसे अंदर वाला जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट होता है बड़ी वेल नोन पर्सनालिटीज़, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, दिग्गज वेल नोन लोग जो बड़ी मेहनत मशक्कत करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इनर ऑर्बिट. सबसे बाहर का ऑर्बिट जो होता है बड़ी ही रियलिटी में रहने वाले लोगों के साथ में. दैट डजंट मीन कि ये जो इनर ऑर्बिट में रहने वाले लोग हैं ये रियलिटी में नहीं रहते हैं, लेकिन जो सबसे आउटर ऑर्बिट होता है या सबसे आउटर सर्कल होता है वो लोग हैं जो शायद गरीब घर में जन्म के आए हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, उनकी परिस्थितियाँ, उनका एजुकेशन, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, सारी की सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो सबसे आउटर ऑर्बिट में है. यानी कि पैसा कम, उनका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ नॉट गुड इनफ टू लिव इन, मतलब गरीबी ज़्यादा है, पैसे भी कम हैं, और जिस तरीके के दोस्त यार हैं, जिस तरीके का पूरा का पूरा एक समाज है वो इस तरीके का है जहाँ पे वो लोग अपनी प्रगति नहीं कर सकते. तो ये सबसे आउटर ऑर्बिट वाले लोग जब सबसे इनर ऑर्बिट में आना चाहते हैं तो इन्हें पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत कुछ ही कम वर्षों में करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके ये पहुंचते हैं इनर ऑर्बिट में. कहते हैं ना आपके सपने 5 साल बाद आपको जो बनना है उसके सपने आप देख रहे हो कि 5 साल मेहनत करके मैं वहां पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, तो नहीं, वो 5 साल की मेहनत अगर आप 1 साल में करते हैं तो बिल्कुल ऊपर वाला भगवान, खुदा, जो भी, जिसे भी आप मानते हैं, वो ज़रूर आपको आपके उस गोल तक पहुंचाना, वो पहुंचाता ही है. एंड वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. हाँ, फैमिली गैदरिंग्स, दोस्त यार, सारी की सारी चीज़ें जो आप लेजरली टाइम में यूज़ करते हैं, एवरीथिंग इज़ गॉन बिकॉज आपके सामने एक गोल है. तो ये जो इनर ऑर्बिट में लोग पहुंचे हैं ना, ये क्यों डायनामिक पर्सनैलिटीज़ है? क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और अपने लक्ष्य से ना हिलते नहीं हैं ये लोग. तो ये जो इनर ऑर्बिट वाले लोग हैं आज ये जाने माने लोग इसी वजह से हैं क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया था और बहुत सारे सेक्रीफाइस किए थे. तो ऐसे ऑर्बिट में अगर पहुंचना है तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है, और जब आप उस इनर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं तब उसको लाइफ में मेंटेन करके चलना भी बहुत ज़रूरी है. कौन से ऑर्बिट में आप कहाँ हो? देखिए, अगर कोई गरीब घर में जन्मता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब ही मरे. यानी कि गोल्स एंड टारगेट्स ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं. हाँ, उसे बिल्कुल इस तरीके से अपने सिर पर ना ले ले कि आप बाकी सारी चीज़ें बर्बाद कर दें. सेक्रीफाइस इज़ डिफरेंट, बर्बाद इज़ डिफरेंट. कौन से ऑर्बिट में आप हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ज़िंदगी आपकी, डिसीजन आपका, क्योंकि ये सफ़र है आपका. कैसे लगा आज का द ऑर्बिट थ्योरी, ज़रूर बताइएगा.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: Shri Jagannatha Society, UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, Hayes, UB3, 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laab zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking

0: घुमा देते हैं और नॉट ओनली व्हाट यू हैव डिसाइडेड कि आज मैंने सिर्फ 10 पाउंड की चीज़ें लेनी है, दस तो कभी हो ही नहीं सकता, वो प्रॉपर आप 50-60 की चीज़ें उठा के लेके आते हैं। सो या इन पर्सन जाने से दूसरे लोग दिखते हैं, चीज़ें दिखती हैं और कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ इन स्टोर होता है तो वो भी आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। लोगों से मिलना, बातें करना एंड अगर हो सके तो जहाँ पे भी स्टोर पे आप कहीं जाए, हमारे तो इतने सुपर मार्केट्स हैं, ट्राई टू टॉक टू द स्टाफ देयर, यू नो, चाहे आप रेस्टोरेंट भी जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ लोगों से बातें करें, बिकॉज एवरीबडी लव्स टू गेट सीन एंड हर्ड। एंड जब हम बातें करते हैं किसी से तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इन जनरल छोटी छोटी चीज़ें स्मॉल टॉक ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है वो पूरे दिन भर काम करते रहते हैं, और जब हम भी चलते चलते उनके हाल चाल पूछ लेते हैं ना, वो छोटा सा काइंड एक्ट शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। आई डू दैट सो मेनी टाइम्स एंड माई किड्स आर लाइक, वी गो टू अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जहाँ के स्टाफ मेम्बर्स अब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज मैं उन सबसे गपशप मारते रहती हूँ। एंड माई किड्स After getting embarrassed for quite a long time, now they got in a habit of talking to that restaurant ka staff. So I think definitely हमारे kids हमारी आदतें pick up करते हैं, humans हैं, हम बात कर सकते हैं तो क्यों ना बातें करें। And चलिए यादों की बारात की तरफ आपको ले चलती हूँ।
1: The evening show with Ashwini.

हेयर, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4.

0: This is Like a Gold. Gold. Reminisce those classics.
1: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini. 7th of July, Tuesday. Hum saath mein manayenge is hour mein. Terrific Tuesday. That is the emotion of the day. And third hour mein ghazal ya qawwali mein kya sunane wali zarur batayega. To is hour ka aagaaz humne kiya tha Mera Man. Ye na bada refreshing gaana lagta hai. एक तो रिफ्रेशिंग की मेरी परिभाषा मैं बता चुकी हूँ. इतनी गर्मी में जाके जब हम ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो कितना रिफ्रेश लगता है हम लोगों को. हाँ, वेरी नाइस. ऐसे वाला फीलिंग आती है ना, सेम वैसे. एंड लेकर हम दीवाना दिल आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में यादों की बारात से सुनाया आप सभी को ये ट्रैक. इसके बाद वाला ट्रैक भी इसमें म्यूजिक आएगा टंग टंग टाना टाना टाना टाना जो भी है. अभी एनीवे मेरा सुरताल चेंज हो रहा है लेकिन हम लोग सुनेंगे भी कौन सा गीत होने वाला है. गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड इस बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस सेकेंड आवर में. अच्छा, आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि भाई जिन्होंने भी जो लाइफ थियोरी पे मैं बात करती हूँ और आज मैंने बात की थी द ऑर्बिट थियोरी, ये मैं पोस्ट करती हूँ. मेरा अपना इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, इस पे मैं पोस्ट करती हूँ. अगर आपने मिस कर दी है आज की लाइफ थियोरी तो ज़रूर देखिएगा ये. दिस इज़ ऑन माई इंस्टाग्राम @ रेडियो वाली अश्विनी.
0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 126 रुपये 80 इंडियन पैसे, 126 इंडियन रुपीज़ एंड 80 पैसे. एंड डोंट फर्गेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a goat.

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच गेम हो चुका है, फुल टाइम हो चुका है. अर्जेंटीना ने ये गेम जीता है. स्विट्जरलैंड एंड कोलंबिया के बीच गेम होगा रात 9 बजे. एंड डोंट फॉरगेट, यू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स Rack Law इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे,
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है। 8:33, इट्स 33 minutes past 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। इमोशन ऑफ द डे में आप सभी को सुनाया धर्मात्मा फिल्म से मुकेश जी और कांचन की आवाज में, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करने का जो तरीका, That is so beautiful, you know, giving compliments, right? So इस चीज़ पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि इन पर्सन जाके शॉपिंग करना, बिकॉज बहुत से लोग मिलते हैं। ओके, नाउ एक चीज़ जो मैंने इस देश में आके सीखी थी, दैट वॉज सेइंग हेलो ऑल बाय माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर्स। क्योंकि मैं जब पार्क में घूमने जाती थी अपने डॉग के साथ में, तो आई यूज़ टू से सी कि स्ट्रेंजर्स खुद से हाई हेलो बोले जा रहे हैं। सो वो एक हैबिट मैंने पिकअप की। एंड उसके बाद में कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल, या बैक इन इंडिया जब मैं थी तब भी लोगों को कॉम्प्लीमेंट करती थी, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को कुछ चीज़ का कॉम्प्लीमेंट देना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी मुझे कोई दिख जाए, अरे आपका ये कपड़ा जो आपने पहना ना, दिस इज़ द ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, ये कलर जो है बहुत जच रहा है, बिकॉज नहीं पता उस इंसान का दिन कैसा जा रहा है। चलते चलते वो एक कॉम्प्लीमेंट और जेन्यून दीजिए। मुझे हमेशा लगता है कि जेन्यून करिए, क्योंकि ओवर जब चीज़ें हम करते हैं ना तो सामने वाले के ध्यान में आ जाती है। सो बिल्कुल, इफ़ पॉसिबल, आप अभी, आप सबको मैं आपके जो डीपी में जो तस्वीरें लगी होंगी उससे मैं आप सबको देख सकती हूँ ऑन व्हाट्सएप। उसके अलावा मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं आप सबको देखने के लिए, लेकिन आई एम 2000% श्योर ऑल ऑफ यू, यू आर ब्यूटिफुल सोल्स बिकॉज यू आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक। और जब म्यूज़िक आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हम कितने प्योर सोल्स हैं हमें ये दिख ही जाता है ना। बट मुझे मज़े जब आते हैं कि देखिए ना, अब सोशल मीडिया की वजह से कितने लोग जो हैं वो फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, है ना, एंड फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, फेक नाम रखते हैं, अपनी तस्वीर तक नहीं लगाते। मुझे कभी कभी आश्चर्य ज़रूर होता है इस चीज़ पे कि भाई जो इंसान अपना असली नाम नहीं दे सकता, अपनी असली तस्वीर नहीं लगा सकता, होंगे बिल्कुल सेफ्टी रीजंस भी होते हैं कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी जो आप हैं वो आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, उसको फेक करना चाह रहे हैं, क्या ही तो रीज़न होगा इसके पीछे, है ना। बिल्कुल, थोड़ी देर में बात करेंगे अबाउट बबल रैप। बबल रैप पे बड़ा मज़ेदार से मुझे कुछ बात करना है, सो ज़रूर आप और हम मिलके बात करेंगे बबल रैप के बारे में।
0: ये है लाइका गोल्ड, अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो। This is Laika Gold.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: Extra podcast update. पॉडकास्ट एपिसोड 23 अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं राइज इन वुमेन्स क्रिकेट होस्टेड बाय दीप राजा। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स क्रिकेट एंड इट शेड्स लाइट ऑन हाउ फार वी हैव कम एज अ सोसाइटी वाइल ऑल्सो क्वेश्चनिंग हाउ फार वी स्टिल नीड टू गो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। हमारे दीप राजा जब बैठते हैं सवाल जवाब करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आते हैं। लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Leica
2: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। Backstage Siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek Sham Soulful Music, Devotion aur Energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.com. UK.
7: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Leica Gold. Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.02 Indian rupee, 371.61 Pakistani rupee, 447.26 Sri Lankan rupee, 164.63 Bangladeshi taka, 86 Afghan Afghani, 172.75 Kenyan shilling, 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £98.75 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio इन लंदन एंड Leica Radio इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो कुछ लिखा है मैंने, सुनाऊँ मैं भी? अब इरशाद आएगा आप लोगों की तरफ से, तब मैं सुना दूँगी। रुकती हूँ आप लोगों के मैसेजेस के लिए, तो सुनाऊँ कुछ जो लिखा है। तो थर्सडे पोएम वाला सेशन शुरू करें। कैसी लगी कि आपको मेरी पोएम पिछली बार जो सुनाई थी? एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू शायरी, सो मैंने समझाया ना तुझे ए दिल, मैंने समझाया ना तुझे, नादान मत बन ए दिल, समझदारों की है दुनिया, तू अपने आप से खिलखिला के मिल। बस शायरी वही होती है जहाँ पे चार लाइंस में आप अपने इमोशंस जो हैं वो बयां कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इमोशंस, वो ज़िप्ड फॉर्म ऑफ इमोशंस होता है शायरी। एंड व्हेन इट कम्स टू पोएम्स, बिल्कुल ज़िप्ड फॉर्म्स तो नहीं है लेकिन थोड़ा इलैबोरेटेड है। ओके, सो बबल रैप के बारे में। नाउ साइकोलॉजी सेज एडल्ट्स हु कांट रेजिस्ट पॉपिंग बबल रैप आरंट बीइंग इमैच्योर, दे मे बी एंजॉयिंग वन ऑफ द ब्रेन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब होता ये है कि हम सभी जब भी कोई पार्सल रिमूव, मतलब हमारे यहाँ पे आता है और पार्सल पे जब बबल रैप लगा होता है, तो आई बेट मोस्ट ऑफ अस, ना हम लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे कि वो बबल रैप के जो बबल्स हैं उसे फोड़ने में मशगूल हो जाते हैं। अब इसके पीछे रीजंस तो यही है ना कि साइकोलॉजी सजेस्ट देयर इज मोर हैपनिंग बीनेथ द सर्फेस। नाउ सिंपल रेपिटेटिव एक्टिविटीज दैट कंबाइन टच साउंड एम इमीडिएट फीडबैक कैन एक्टिवेट साइकोलॉजिकल प्रोसेस लिंक्ड टू रिलैक्सेशन। कुल मिला के उनका कहना ये है कि जब बबल रैप के बबल आप फोड़ते हैं तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, अटेंशन भी मिलता है ब्रेन को कि अरे वाह वाह मैंने कितनी अच्छी एक्टिविटी, देखो मैंने ये बबल रैप के बबल्स फोड़ दिए, है ना? कुछ तो एक अचीवमेंट वाली ना अजीब सी एक हमें फीलिंग मिलती है हम सभी को। द अपील इज इन नेसेसरी अबाउट

0: अपनी लिखी हुई शायरी, जब अपनी लिखी हुई अपने आप से हम जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसको शेयर करने का मज़ा और सेटिस्फैक्शन कुछ और होता है। इस आवर का आखिरी ट्रैक मैं आप सबको सुना रही हूँ धनवान फिल्म से, लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में, ये आँखें देखकर। सो जिनकी ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी आँखें हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड ये सॉन्ग मेरी तरफ से, अश्विनी की तरफ से, बड़ी बड़ी आँखें वालों के लिए। मेरी आँखें तो छोटी छोटी सी, मेरे लिए नहीं है। Like a radio network.
1: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410, दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल, Auto protected.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767 7627।
1: डाउनलोड द Leica रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज।
7: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: बिल्कुल, मैं भी आई आई आई और आ गई और पहुंच गई बिल्कुल लव स्टोरी से, सुनाया लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज में, देखो मैंने देखा एक सपना, मेलोडियस एंड रिफ्रेशिंग सॉन्ग। उसके पहले ओहो आहा, मतलब उफ वाला गाना लगता है मुझे, गवाह है चांद तारे गवाह है, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में दामिनी फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:14, इट्स 9:14। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तीसरा घंटा आप सबको वेलकम कर लिया है और आप सबसे हमारी गपशप गुफ्तगू शुरू है। किसी ने कहा कि तुम्हारी ये जो चटर पटर है ना अश्विनी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भाई ये चटर पटर करने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आती हूँ और ये आप जो शो सुनते हैं ये चटर पटर के लिए ही सुनते हैं, सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू आप सभी को कि आप लोग सभी साथ निभाते हैं, नॉट ओनली मेरा लेकिन हमारे सारे के सारे जो प्रेजेंटर्स हैं उन सब के साथ आप जितना घुल मिल के और जिस तरीके से आप अपने फीडबैक्स देते हैं, जिस तरीके से आप इंटरैक्ट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम प्रेजेंटर्स भी आपस में बात करते हैं ना तो हम आप लोगों के बात में यही, आप लोगों के बारे में यही बात करते हैं कि शो में मज़ा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप लोगों की तरफ से इंटरैक्शंस आते रहती है। जैसे गीत प्ले कर दिया, आहा उफ क्या गीत है, यू नो दैट काइंड ऑफ, कि वाह यार ये गीत से ना ये वाली चीज़ मुझे याद आ गई, या ब्यूटीफुल ट्रैक या इमोशनल ट्रैक, जो भी चीज़ें आप लोगों की तरफ से आती है हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों में से हर एक इंसान, हम सबको जो है आप हमेशा कहते हैं कि भाई थैंक यू, हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आप लोगों के मैसेजेस को, गिव एंड टेक है ना, एक इमोशनल गिव एंड टेक है आपके और हमारे बीच। एंड ऑब्वियसली इस इमोशनल गिव एंड टेक में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है म्यूज़िक जो आप और हम यहाँ सुनते हैं, और हम लोग जो वेरिएशन यहाँ पे लेके आते हैं उसमें ऑब्वियसली आवर के हिसाब से हम जाते हैं कि ना दिस इज़ द थर्ड आवर, तो अब गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, ज़रा लिख के ज़रा भेजिए। और अगला गीत कभी किसी से जो वादा किया होगा ना वो निभाइएगा ज़रूर, इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले बात की थी, आज ट्यूसडे है तो 2-3 दिन पहले कैसे होगा, शायद मैंने फ्राइडे या थर्सडे बात की होगी, वादा तेरा वादा।
1: Ashwin SBI, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 126 इंडियन रुपीज एंड 80 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे ही रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.

0: Full Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: तो स्विट्जरलैंड एंड कोलंबिया के बीच गेम शुरू हो चुका है. 21 मिनट्स हो चुके हैं. दोनों में से किसी भी कंट्री ने अभी तक गोल नहीं दागा. Don't forget, you get your 15 minutes of free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Laika.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: What a fantastic track from Hum Kisi Se Kam Nahi, which was released in 1977. Mohammad Rafi and Sushma Shrestha ki awaaz mein sunaya aap sabhi ko ye geet. Isme wo bachchon ki awaaz mein jo hai na ki क्या हुआ वाला जो आता ना तेरा वादा, वो उस ऊपर चढ़ाते हैं. मुझे बड़े क्यूट लगते हैं. अच्छा, बच्चों के ऊपर जो गीत आया करते थे, मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी जब चित्रहार में आई यूज टू सी दोस दादी अम्मा मान जाओ टैंग टैंग छोड़ो भी ये गुस्सा, ज़रा हंस के दिखाओ. आई जस्ट फील अभी ना रिश्तों का इनोसेंस कहीं तो लॉस्ट हो गया है. I just feel this. पहले ना एक इनोसेंस था रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में इनोसेंस था, मिलावटें नहीं होती थी. जितना हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है एज ह्यूमंस, इतनी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं कंपेयर्ड पहले की जनरेशन्स में, तो इतना मिलने में तो हम सब ने कितना खुश रहना चाहिए था एंड कितना एक्चुअली पायस्ट एंड प्योर रहना चाहिए था. लेकिन हम लोग ना पोल्यूटेड हो गए एंड हम लोग ज़रूरत है हम सबको डिटॉक्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा. अभी आपको लगा होगा कि अश्विनी ने एकदम से सुर क्यों चेंज कर दिया, अभी तक तो हंसती मुस्कुराते बात कर रही थी. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस ट्रैक एंड देन जस्ट रियलाइज्ड कि वो जो बच्चों के गीत उस समय आते थे चित्रहार में जब हम देखते थे, और हम भी कितने इनोसेंटली उस एक दिन के उस आधे घंटे के लिए रुका करते थे. अभी एट द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स यू जस्ट प्रेस द बटन एंड यू गेट एवरीथिंग, है ना, कि चीज़ें भी जो घर पे आ रही हैं, लोगों से कांटेक्ट कम हो रहा है. दुनिया भर से कनेक्टेड है लेकिन लोगों में अकेलापन बहुत बढ़ गया है, और ये अकेलापन दूर करने के लिए इतने सारे लोगों ने कम्युनिटी ग्रुप्स अभी स्टार्ट कर दिए, इनिशिएट किया है कि भाई मुझे अकेला लग रहा था तो मैंने इसीलिए चीज़ें स्टार्ट की. द न्यू कंसेप्ट इज़ द सपर क्लब, राइट. मतलब कई लोग जो हैं अपने घर पे 8 या 10 कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को बुलाते हैं खाना खाने के लिए, एंड ऐसे करते करते जो है उनकी अब अच्छी फ्रेंड सर्कल की एक बड़ी सी झुंड बन गया है, एक बड़ा सा गैंग बन गया है लोगों का अभी, कि जहाँ लोग जो हैं ब्लाइंडली उन्होंने बुलाया था लोगों को कि आइए हमारे यहाँ पे खाना खाने के लिए, ऑब्वियसली पेड ही होगा. आजकल सपर क्लब का जो एक ट्रेंड चल रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो. एंड लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इतने घुल मिल जाते हैं और अपनी दिल की सारी चीज़ें जब बयां करते हैं. जैसे मैंने कहा कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट सीन एंड हर्ट नाउअडेज, एंड दैट एक्चुअली हैपन्स एट दीज काइंड ऑफ सपर क्लब्स भी जो हो रही हैं. कम्युनिटी इवेंट्स करिए ना, मिलिए एक दूसरे से मिलिए, यू नो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से मिलना, बातें करना. हाँ, बस वही है कि जो इनोसेंस लॉस्ट हो गया है वो इनोसेंस वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे से ऑनेस्टी से तो पेश आ सकते हैं. बहुत सारे फिल्टर्स लगा लिए ना हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिल्टर्स सोशल मीडिया पे हम भी लगा लेते हैं भाई, हमें भी अच्छा दिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिल्टर्स लगाने के बाद भी अच्छा दिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे वर्किंग आउट, गोइंग इन जिम एवरी डे इज मच नीडेड. कितना भी फिल्टर लगा लो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ दिख ही पड़ेगी. वैसे ही रिश्तों में होता है, रिश्तों में भी वही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. कितने भी फिल्टर्स यूज़ कर लीजिए लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स लेने हैं ना वो लेना बहुत ज़रूरी है. आज नहीं कल मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ. एक भारत के बड़े ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन हैं, कंपोज़र हैं, उनके बारे में आज मुझे ये स्टोरी पता चली एंड इट्स ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर कहानी है. आज नहीं कल सुनाऊँगी.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. Hey, no. Open University. The future is open.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
9: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे।
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Lyka Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 9। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी का लिखा गीत आप सबने सुना मेरे महबूब फिल्म से। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी लता मंगेशकर की आवाज़ में। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, कसमे वादे, कुछ देर पहले हमने कुछ बातें की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ वो है शोले फिल्म से। 1975 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। एंड जब भी कोई हसीना रूठ जाती है ना तो आई थिंक उसके बॉयफ्रेंड को, उसके पति को, उसके पार्टनर को ऐसे कुछ मनाना चाहिए। लो सुनो।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands पर।

0: Ashwini, in for Anissa Nazir on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit kajalscouture.co.uk.
5: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music
6: for a super
0: currency
6: hot
0: updates
6: summer
0: are sponsored by LemFi Mobile Leica app.
6: Radio
0: Send
6: Network.
0: Money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
7: For £1, you'll get 127.1 Indian rupee, 371.46 Pakistani rupee, 447.1 Sri Lankan rupee, 164.59 Bangladeshi taka, 85.75 Afghani, 172.7 Kenyan shilling, and 1.33 US dollars.
8: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
8: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
7: Gold is currently trading at £98.75 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
7: जी हाँ मिला लेते हैं घड़ियाँ इट्स 45 मिनट्स पास्ट 9 एंड आखिरी दो गीतों के साथ में टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गज़ल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली कल मैंने सुनाई थी कवाली तो आज सुनाऊंगी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल्स तेरी खुशबू में बसे खत मैं चलाता कैसे एंड उसके बाद में आखिरी गीत जो होगा एक तो देखो हम लोग गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना यहाँ पे आई नो मैंने ही मौसम आपको सुनाया था कि कल फिर 30s में मौसम होने वाला है टेम्परेचर 30s में रहेगा सो कम से कम सुन के तो हम खुशी ले सकते हैं बादल यूँ गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है एक्चुअली मेघा बरसो रे बादल आओ रे हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं हमारी बारिश को है ना तो चलिए इसी तरह पे आई हैव टू से बिल्कुल हमारी गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विस सुनिएगा लाइका रेडियो 90s लाइका रेडियो पंजाबी लाइका गोल्ड 2 कल सुबह आएगी काजल उसका साथ ज़रूर दीजिएगा एंड काजल की एक जो अदा होती ना अपने शो में प्रेजेंट करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनका भी जो एक स्टोरी टाइम होता है एंड साथ में प्यार दो प्यार लो प्यार सबसे खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी में अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपनी पावर का यूज़ नहीं करता होगा ऑन दैट नोट लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय
9: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
10: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
11: Ghazal.

0: bringing to you the best classics all night. This is Like a Gold.
1: आपके सामने एक red button है.
2: दबा दिया.
1: नहीं दबाना था.
3: The madness is back. धमाल 4.
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
3: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
7: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. At all protected.
8: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
9: पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
6: When you go abroad everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English But louder.
7: 4 beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: Laika Gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar geet.
9: Hum pyaar tumhe karte hain. Hame apna.

कर कैसा सूदे थांदे वहां फकीरे वहां फकीरे सूट पहन कर कैसा सूदे थांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे।

तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला जो का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा।

0: Stop classics. This is Leica Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 020-8574-8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली।

0: Truth is like a gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया।
3: नहीं दबाना था।
5: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
9: Classic नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।